आप तो निरंकारी ज्योत आप तो निरंकार का ही स्वरूप पर ए दास अकाल पुरुष को किस वास्ते मंग रहे हैं साढ़े वास्ते मंग रहे साढ़े वास्ते से महान वड्डी दास शुभ कर्मा देह शिवावर मुहे है शुभ कर्मन से कम हूं न करो शुभ कर्मा शुभ कर्म ही सबको बची है बाबा जी बची करते सब परमार्थ तो सदा ही पवित्र है निर्मल परमार्थ सदा ही पवित्र और साडा विहार ये पवित्र होना चाहिए विहार निर्मल होना चाहिए परमार्थ का सदा ही निर्मल जिसका विहार पवित्र है विहार सच्चा से सच्चा हो गया उसका जीवन विहार हो रहा है दिखावा हो रहा है वो फिर असली जीवन में बनावटी जीवन तो शुभ कर्मों की विशेषता है सबसे ज्यादा शुभ कर्मों वाली दुनिया में कामयाबी दुनिया भी सत्कार कर दी है जिसे कोई शुभ कर्म तो अजकल भी दर्शन कलयुग जीवन के वास्ते अकाल पुरख देकर अरदास कर रहे हम दे शिवावर मोए के है तो ये भी कहते हैं कि कलयुग दा सतगुरु जी ने शिवजी महाराज की अरदास की सबने शिव नाम जो है वो अकाल पुरख जिन्हों लोग शिवजी कहते हैं असली उसका नाम महादेव है सतगुरु जी ने आप फरमाया है महादेव को कहत सदा शिव निरंकार का कीनत न भेद महादेव नु लोग शिव कहते वो इस वास्ते जेड़ा सिमरन करने वाला हो रब की बंदगी करने वाला लोग कहें भैया तो रब रूप ही क्यों रब न जुड़े इसे तरह महादेव न शिव जी किया जाता है पर असल में शिव नाम अकाल पुरख उस अकाल पुरख के अगे कलगीधर दशमेश पिता जी ने अरदास की थी ये वर मंगे है दे शिवा वर मुड़े के है शुभ कर्मन से कम शुभ कर्मा की दात साढ़े बार तो जिन्होंने शुभ कर्मा की दात प्राप्त कर ली उन्होंने गुरु दिया मेहर उन्होंने दुनिया जय जयकार अज मेरे कलगीधर सच्चे पातशाह जी साहबजादे बाबा जोरावर सिंह जी बाबा फतेह सिंह जिन्हों फतेह हासिल हुई धर्म की तज खड़ी कर दी आखो श्री धर्म का बोल सदा वास्ते चढ़दिया कला चल फतेह प्राप्त नाशवंत पदार्थों प्यार नहीं किया अमर वस्तु जो सी धर्म उसनों अपना है जिद को धर्म है वे को सब धर्म ही सबको वीडी का जिदे को धर्म है भाई उसका जीवन सदा वास्ते सफल धर्म

0: मित्र असाड़े से ओठने दी जग समाया जो नानक बिरले गुरमुख प्यारे
1: पाई रे इस मन को समझाए पाई रे इस मन को समझाए ए मन आलस क्या करे गुरमुख नाम प्याए आई रे

के लोग बसेंगे तेई रहनी रे सोई मेरा ओ साहिब मैं उसका तेरा रहत बिना ने सिंह कहावे रहत बिना दर चोटा खावे रहत बिना तर

मन विच वस जावे बड़िया बरकतां ने। वाहिगुरू दा नाम प्रभु दा नाम हिरदे च वस जावे बड़िया वडियाई है। बड़ा आनंद है कि रोने झोरे केवल उन्हां लोकां वास्ते ने जिन्हां दे हिरदे च नाम नहीं, जिन्हां दे हिरदे विच नाम है पूर्ण शांति, पूर्ण आनंद है। जपदे हां, जपन के जतना विच हां, हिरदे च वसाउण के जतना विच हां। साडी लोड़ भी है, साडा जतन भी है। लोड़ भी साडी है कि सानू सुख मिले, ते सुख क्योंकि होर कितने नहीं मिलता। साडे सारियां दा प्रयोजन है कि नाम वस जावे हिरदे च, जीवन च नाम आ जावे ताकि सुख आ जाए। जदों कदे ऐसा महसूस होवे ना कि मन अजे सुखी नहीं, मन अजे शांत नहीं, जदों कदे ऐसा प्रतीत होवे मन विचों क्रोध अजे नहीं गया, मन अजे लोभ करता है, मन च वासनावां कायम ने, मन विच ईरखा बदस्तूर मौजूद है, जिन्ना चिर महसूस होवे समझ लैना नाम अजे जपण दे आर विच आ हिरदे च नहीं वसिया। जदों हिरदे च वस जांदा है मनुख बड़ा होर तरह का हो जाता, उदों रोमां विचों अमृत झरदा है, स्वाद आउंदा है। उस वेले खून दे कतरियां दे विचों भी कली कली नस विचों पूरे शरीर विचों श्वासां विचों नाम उचरिया भी जांदा है ते नाम सुणदा भी, अपने आप नूं अपने आपे विचों ते अपने आले दुआले विचों नाम दीआं धुनां प्रतीत हुंदीआं ने। इसे शब्द आपां पढ़ रहे हां ना साहिबंत कहने ना जीत आवे सद कीर्तन करता। कमाल की गल है, कीर्तन कितने घंटा डेढ़ घंटा तो हो गया, सदा ही कीर्तन होता रहे, ये किवें हो सकता। कोई एक अवस्था है, कोई उन्हें अनहद नार की गल करता, कोई उसनू इलाही नार की गल कह के करता, कोई किसे ढंग नाल दसता है, लेकिन यह बिल्कुल सत है कि जिसले वाहिगुरु हिरदे च वस जावे ना जो लोर ते मस्ती पैदा होती, जो आनंद की अवस्था पैदा होती है, हर वेले ही जीवन च एक संगीत गूंजता है। हर वक्त की आला दुआला ते मनुख का अपना शरीर यूं ही जापता जिवें झूम झूम के गा रहा हो। नाना हो जिहड़ा मर्यादा अनुसार कीर्तन असीं करने आ, कई बार यह भी बोझ जापता, सुनना भी बोझ जापता, करना भी बोझ जापता। हिरदे च ना वसे आनंद ना देता ते वगार जापता, बोझ जापता। शुरू शुरू में सारा कुछ बोझ ही जापता है। मैं एक बेनती करा, बच्चे नु स्कूल तोरने पहला आड़ी भी करता है। कोई विरले बच्चे होंगे ने जिहड़े शौक नाल तुरदे ने, दूसरे बच्चों वल वेख के इन्हां दा लिबास बड़ा वधिया, उत्थे खेडदे ने, हसदे ने, नचदे ने, कई बच्चों के अंदर यह शौक पैदा करता जाता है, बनेगा बहुत वड्डा अफसर, बनेगा बड़िया तरक्कियां करेगा, वह चा लैके तुरदा। नहीं तो आम तौर पर बच्चा जिहड़ा स्कूल जाण लगिया बहुते तां रोंदे भी इत्थे गए, उन्होंने एक बार धक्के स्कूल पहुंचा पैदा, उथे जाके पैंता, एक तो जकड़ के बहना बड़ा, एक जो कुछ पढ़ाते हैं वो समझ तो बहरा हों, वो पहला पहला बड़े परेशान होता, पहला पहला उस पूरा एरा या एबीसी या जो भी अक्षर हैं वो बोझ जापते। लेकिन चार दिन बाद जो बोझ है वह ज्ञान का बोध का एक सोमा बन जाता है, फिर उही अक्षर मौज बन जाते, उन्हें अक्षर बिना नींद नहीं आती, जब तक कुछ पढ़ना लवे वो मन की शांति नहीं बनती। यह संसारी पद्धत की गल, धर्म के मार्ग से भी ऐसा है। शुरू शुरू च अमृत भी बोझ जापता, नितनेम भी बोझ जापता, बाणी पढ़नी गाउनी सुननी भी कई बार बोझ जापती, और बहुत बंदे ऐसे वेखे ने जिहड़े कदे कदाई इस पासे तुरन वाले ने ना, कीर्तन सुनना पै जाए, थोड़ा जिहा अगे पिछे हो जाए, लेट हो जाए, वासियां मारदे ने, पासे मारदे ने, किहड़े वेले भूल पवे जान छुट्टे फसे जापते। लेकिन माड़ा जिहा बंदा रुचि लावे ते जिस तरह वो बेनती की है कि स्कूल जाण वाले बच्चे कई ऐसे भी होंदे ने, वह वरिया बंदी पंद्रह पंद्रह भी वरे बोझ ही ढोते ने, पढ़ते भी किताबां नाल मत्था मारदे ने, रोंदे दुखी होंदे, कई वारी वह फेल हो जाते, ते तू तू के अपने आप नूं शर्मो कशर्मी दूसरे नाल तोरदे ने, चा पैदा नहीं होंदी, शौक नाल नहीं पढ़ते, ते फिर उनके माता पिता और आला दुआला कहते पढ़ता तो है, पढ़ता कदा विगार कटता, तू कसीट के तुरैया वैसे पढ़ने वाली गल कोई। बिल्कुल इसे तरह साड़ी गल,
ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਵਜ਼ੀਫੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਇਨਾਮ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਈ ਇਨਾਮਾਂ ਦੇ ਸ਼ੌਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇਗਾ ਕੁਝ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿ ਨਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਕੇਵਲ ਕਰਦੇ, ਕਰਨ ਦਾ ਠਰਕ ਹੈ, ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ। ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਿਮਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਮੋ ਸ਼ਰਮੀ ਲੱਗੇ, ਕੁਝ ਐਸੇ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਪਾਂਗੇ, ਪੜਾਂਗੇ, ਕਰਾਂਗੇ, ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਲਾਲਚ ਕਹਿ ਲਓ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਾ ਲਾਲਚ ਕਹਿ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ, ਸਟੱਡੀ ਫਾਰ ਸਟੱਡੀ ਸੇਕ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਭਗਤੀ ਆ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਭਗਤੀ ਭਗਤੀ ਵਾਸਤੇ, ਸਿਮਰਨ ਸਿਮਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਭਜਨ ਭਜਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਲਾਲਸਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਆਨੰਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਸਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਪਦਿਆਂ ਜਪਦਿਆਂ ਹੀ ਅੰਦਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਸਿਮਰਦਿਆਂ ਸਿਮਰਦਿਆਂ ਹੀ ਹਿਰਦੇ ਚ ਵਸ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਨਾ ਕਿ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵਸ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਜਪਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਜੁਗਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੀਣ ਵੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਾਉਣੇ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆਕਾਸ਼ ਲਟਕਾ ਦਈਏ, ਹਵਾ ਚ ਲਟਕਾ ਦਈਏ, ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਫੜੇਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫੜਨਾ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਚ ਹੀ ਸੁੱਟਣਾ ਪਏਗਾ, ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੜ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਉਦਾਂ ਨੂੰ ਉੱਠੇਗਾ। ਇਵੇਂ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀਵਾ ਦੀ, ਜੀਵਾ ਤੋਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜੜ ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਫਲ ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ ਲਿਜਾਂਦਾ। ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੜਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੁਰਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਪੱਤੇ ਫਲਦੇ ਫੁੱਲਦੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਫਲ ਲੈਂਦੇ, ਪੂਰਾ ਸਰੀਰ ਇਹਦੇ ਰਸ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ, ਜਪਦਿਆਂ ਜਪਦਿਆਂ ਸਿਮਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਪਦਿਆਂ ਜਪਦਿਆਂ ਆਚਰ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਜਪਾਂਗੇ ਤੇ ਮੁੱਖ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਰੋਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਚ ਰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਉਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਸਾਂ ਉਹ ਹਿਰਦੇ ਚ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਭੁੱਲਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਹੀ ਭੁਲਾ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਤਰ ਰਾਮ ਰਾਏ ਪ੍ਰਗਟੇ ਆਏ ਗੁਰਪੂਰੇ ਦੀਓ ਰੰਗ ਲਾਏ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਚ, ਚੀਤ ਆਵੇ ਤਾਂ ਸਰਬ ਕੋ ਰਾਜਾ, ਚੀਤ ਆਵੇ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਕਾਜਾ, ਚੀਤ ਆਵੇ ਤਾਂ ਰੰਗ ਗੁਲਾਬ।

केवन किन ही निवल भयंगम साधे मोहे दीन हर हर आराधे तेरा भरोसा प्यारे आन न जाना वैसा किन्हीं ग्रह तजवन खंड पाया किन्हीं मोन अवधूत सदाया कोई कह तो अनन भगवती मोहे दीन हर हर ओट लीती किन्हीं कया मैं कुले वडाई किन्हीं कया बां बहु भाई कोई कहे मैं धने पसारा मोहे दीन हर हर आधारा किन्हीं भवन

काल खाए छत होंदे, काल खाए छत होंदे, नानक पछाणे से गुरसिखी दी ए निशानी। हां तिसू विचों मारिया, हां तिसू विचों मारिया, मां होंदे कोई नी माणा। हां तिसू विचों मारिया, हां तिसू विचों मारिया, तां होंदे कोई नी ताणा। हाँ तो सिर तो आया छठ सियाण को हो।

सरदार बुलाका सिंह ने नीवी पा ली अते सोचन लगा कि ठीक ही मैं कैरां वाली करतूत कर रहा हां। जे मैं हरमंदर साहब दी शान बदले जान दे दिंदा कि मस्से नाल लड़ मरन वास्ते होर भी सिख आउंदे, कि मैं अपनी जान नूं धर्म नालों ज्यादा प्यारी समझ के भज आया हां। ते फिर सिख ने आप ही जवाब दिता, नहीं, जे मैं उसे ही लड़के मर जांदा तां हरमंदर साहब दी हो रही बेअदबी दी खबर इन्हां सिंघां नूं कौन पहुंचाउंदा। इन्नी गल सोच के सरदार बुलाका सिंह ने जथेदार नूं ताना हे

वो कदम सुहावने हैं, जो कदम सतसंगत वाले जाते हैं, जो कदम परोपकार ने किसी की सेवा ले किसी के भले ले उठते।